आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: All right, a few more shout-outs. Richard in Derby, you got it. Suraj in Edmonton, Divya in Harrow, Pravin in Crawley. I'm going to let you have that. You've given me all three names in the two batches of names that you've given me. All right, let's get a listen to this trio, shall we? We had today Farida Jalal. We had Anil Kapoor. Many of you said Sanjay Kapoor. And we had Madhuri.
1: अरे तू ये क्या कह रहा है? तुम दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या?
2: नहीं माँ, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। अंजलि तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम बचपन से एक साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं।
1: ये तो क्या कह रहा है? ये कैसे हो सकता है?
3: तुम तो उसे जानते ही हो, कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा था कि हमारे होटल के लिए भी कोई डांस का प्रोग्राम करो, सो कर लिया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पूजा को तो जरूर अच्छा लगा होगा।
0: फ्रॉम द मूवी पुकार। Well done, you smashed it if you go, right? Awesome stuff, don't worry if you didn't. We'll have another one tomorrow. Your hidden gem is on the way for you, it's Sonia on Drive. Stay with me.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,